0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: कृषि संदेश.

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान फिर से हाजिर हुआ हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजन बाजी सर, और हम फिर से हाजिर हुए हैं इस एमबीए द डिफरेंशिएटर की अगली सीरीज के लिए। तो बाजी सर, जैसे हमने पिछले जो दो एपिसोड्स में दो स्पेशलाइजेशन के बारे में बात की थी, जस्ट छोटा सा कि उसमें मार्केटिंग और एचआर, तो आज हम एक नया जो स्पेशलाइजेशन है, जो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: राइट
0: जी, और उसमें वही सेम फॉर्मेट वैसी रहेगा, एजुकेशन क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी और आपके पर्सनल इंटरेस्ट और
1: अपॉर्चुनिटीज
0: क्या होना। तो बाजी सर चालू करेंगे चर्चा,
1: करते हैं सर, चालू करते हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहले फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन दोस्तों, और एमबीए करने के बाद फाइनेंस का अगर आप स्पेशलाइजेशन, जो भी बच्चा या बच्ची सोच रही है, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो किस में होना चाहिए। प्राइमरली सबसे पहले कॉमर्स ग्रेजुएट होगा तो दी बेस्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक फील्ड है फाइनेंस, और कॉमर्स जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो पूरा फाइनेंस, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स, सब उसके बारे में आप पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ में अगर चाहें तो आप बीबीए वाले भी इसको चूज कर सकते हैं। आपकी क्या राय बाजी?
1: मतलब प्रेफरेबली बीकॉम या फिर कॉमर्स फील्ड या फिर बीबीए।
0: जी जी जी, प्रेफरेबली वो बैकग्राउंड होना चाहिए।
1: ये रहा तो अच्छा है, क्योंकि फिर कुछ बेसिक्स उनका ना बैकग्राउंड या फिर बेस कुछ क्रिएट होता है।
0: जी जी,
1: और वो दे कैन टेक दिस थिंग फॉरवर्ड।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट,
1: तो ये अच्छा है कॉमर्स एंड बीबीए स्टूडेंट के लिए फाइनेंस आगे चूज करना।
0: जी,
1: प्रेफरेबली गुड।
0: जी जी जी, और उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में हैं, यानी टेक्निकल मतलब बीसीए, बीसीएस या बी क्यूए हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, पर आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने पर्सनली मैंने देखा है, बी स्कूल से मैंने देखा है, अगर वो चूज कर लेता है तो उसे अकाउंट्स क्या है वहाँ, जनरल एंट्री से लेके डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, वहां से शुरुआत करनी पड़ती है।
1: राइट, राइट।
0: तो थोड़ा टफ हो जाता है और चैलेंजिंग हो जाता है, और फ्यूचर करियर में भी वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाता है वो एजुकेशन आपका।
1: राइट राइट राइट, सही बता रहे सर। अभी आज का सिचुएशन कैसा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ ना, फाइनेंस फील्ड के लिए आज का सिचुएशन, आज का टाइम जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है।
0: जी जी,
1: है ना, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इसके और भी अच्छे दिन आने के संकेत आ गए हैं।
0: जी जी,
1: हम लोग देखते हैं प्री 2000 एरा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो क्लोज इकोनॉमी थी, दे ओपन इट फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, और उसके बाद में लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट केम इनटू दी इंडिया, और इकोनॉमी अपना काफी डेवलपमेंट में आ गया, काफी ग्रोथ में आ गया। उसके बाद में 2000 टू 2016-17 अभी तक ये 15-16 साल में फाइनेंस फील्ड जो है ना, वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है।
0: जी, जी, जी।
1: बहुत काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उसमें क्रिएट हुई है।
0: जी, जी।
1: और अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद में वो और भी काफी अपॉर्चुनिटीज आने के संकेत हैं। तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर फाइनेंस
0: फील्ड।
1: जिनको स्पेशलाइज इसमें कुछ करना है, उन्होंने फाइनेंस फील्ड चूज करने में आज में काफी समझदारी हो सकती है।
0: मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई चूज कर रहा है फाइनेंस, अगर स्पेशलाइजेशन चूज कर रहा है,
1: राइट,
0: तो उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, आप थोड़ा उसमें ऐड कर सकते हैं?
1: श्योर सर, श्योर
0: जी।
1: अभी देखिए, कॉमर्स या फिर जो फाइनेंस फील्ड है
0: जी,
1: उसका वो जॉब प्रोफाइल जो है वो दैट इज मोर अबाउट द नंबर्स, मोर अबाउट द कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो ये थोड़ा सा जिसका मैथमेटिक्स काफी अच्छा है, ठीक है, जो इंट्रोवर्ट है, जो काफी सोचने वाला इंसान है, थिंकर जिसको बोलते हैं, डीप थिंकर, ठीक है, फिर जगर, लॉजिकल थिंकर, है ना, ये जिसकी क्वालिटीज है उसके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा सूट करता है।
0: ओके ओके, तो मतलब पर्सनालिटी जो इस तरह की रहेगी तो आपके लिए वो जॉब प्रोफाइल भी सूट होना चाहिए।
1: सूट होता है
0: जी, मतलब मेन उद्देश्य जैसे हमने कई एपिसोड में भी ये बताया है कि आपकी पर्सनालिटी अगर सूट नहीं हो रही तो आप मिसफिट हो जाते हैं।
1: मिसफिट होते हैं, करेक्ट
0: जी जी। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अभी दो हो गया, एजुकेशन बात कर ली, पर्सनालिटी की हमने बात कर ली, अब तीसरा आता है पर्सनल इंटरेस्ट।
1: उसमें थोड़ा सा आप क्लैरिटी।
0: जी जी, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी में जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, दो तरीके के जॉब प्रोफाइल होते हैं कोई भी कंपनी में, दो तीन तरीके, मोटा मोटी मैं दो तरीके का बताऊंगा। एक जो रहता है थोड़ा जो फील्ड वगैरह में जाता है इधर उधर जाएगा वो एक जॉब प्रोफाइल होता है।
1: हाँ जी।
0: और दूसरा जॉब प्रोफाइल जिसे कहेंगे हम एक ब्रॉडर सेंस में जो डेस्क जॉब होता है। अगर आपको घूमने फिरने का वाला जॉब पसंद है आप एक जगह नहीं बैठ सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा डिसीजन। तो कहने का मतलब पर्सनल इंटरेस्ट जिसको होगा कि आपको डेस्क जॉब अच्छा लगता है और आपको भाई स्टैटिस्टिक्स नंबर्स कैलकुलेशंस डेटा ये सब कैलकुलेशन में बहुत पर्सनल काफी इंटरेस्ट है इसमें तो आपके लिए दी बेस्ट फील्ड यही होता है। कैलकुलेशंस हो गया नंबर्स हो गया स्टैटिस्टिक्स हो गया परसेंटेज में बात करते रहेंगे आप तो आपको अपने आप को टटोलना है ये मुझे अच्छा लगता है तो आपके लिए ये फील्ड जो है दी बेस्ट। आपकी क्या राय है?
1: सही है सर, एकदम परफेक्ट बताया आपने
0: जी।
1: जैसे आपने लास्ट इसमें भी डिस्कस किया यू शुड लुक इनटू योर पर्सनालिटी
0: राइट
1: और योर पर्सनल इंटरेस्ट
0: राइट राइट
1: तो ये आप अपने आप को समझते हैं
0: जी
1: है ना और आपको क्या चाहिए ये आपका क्लैरिटी है
0: जी
1: है ना। जैसे आपने बताया इनहाउस जॉब डेस्कटॉप जॉब है ना तो ये फाइनेंस फील्ड आपके लिए बहुत
0: सूट करता है जी। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हर बार यही आ जाती है कि अपॉर्चुनिटी उसमें क्या क्या अवेलेबल है इस फील्ड में तो आप उसमें थोड़ा श्रोताओं के जो सुन रहे हैं उनको बताइए प्लीज।
1: श्योर श्योर सर। अभी फाइनेंस फील्ड में जो है आज की डेट में है ना काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एज ए कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर
0: जी।
1: जो बड़े कॉर्पोरेट्स में आज की डेट में फाइनेंस मैनेजर की बहुत बहुत बड़े पैमाने में जरूरत है
0: जी जी
1: क्योंकि फाइनेंस फील्ड आज की डेट में फाइनेंस मैनेजमेंट ये बड़ा क्रूशियल हो गया है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर देन सीएस कंपनी सेक्रेटरी
0: जी
1: ठीक है देन फाइनेंशियल एनालिस्ट
0: जी
1: ये एक अच्छा प्रोफाइल है ये भी एक काफी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। उसके बाद में सीए है
0: जी
1: और फिर ट्रेडिशनल जो है जैसे कंपनी अकाउंटेंट ठीक है ये भी प्रोफाइल ये भी अपॉर्चुनिटीज ये
0: काफी सारी है। यानी रीसेंट टाइम में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है जैसे आपने कहा कि रीसेंट टाइम में मैंने जो देखा सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो आपने कहा कि फाइनेंशियल एनालिस्ट ये मैंने देखा काफी यंग जनरेशन को सारी आईटी कंपनी भी फाइनेंशियल एनालिसिस को आजकल हायर कर रही है और उनको यही स्पेशलाइजेशन फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वाले ही बच्चे चाहिए रहते हैं उनको यंग जो पोस्ट ग्रेजुएट है
1: फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट
0: सही कहा
1: जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स और एनालिस्ट ऐसे दो फील्ड है
0: जी।
1: तो एनालिटिक्स में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी
0: बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी
1: जिसका स्टैटिस्टिक है सब्जेक्ट है ना जिसने ग्रेजुएशन में या फिर है ना पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ इसमें एक्स्ट्रा पढ़ा है
0: जी
1: उसके लिए बिजनेस एनालिटिक्स इज गोइंग टू बी अ
0: बिग फील्ड
1: बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है। बिजनेस एनालिटिक्स जो स्टैटिस्टिक में काम करते हैं उनका आज की डेट में सैलरी 40 लाख 50 लाख तक भी है
0: जो एक्सपीरियंस जिनको हो गया
1: है
0: जिनको हो गया जी जी बिल्कुल सही।
1: दैट इज द रोड अहेड आई वेंट टू से
0: जी है ना। दोस्तों हमने ये जो चार चीज को हमने टच किया है एजुकेशन पर्सनालिटी पर्सनल इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आप इस सब टॉपिक में अगर फिट बैठते हैं तो आप फाइनेंस फील्ड ही आप चूज कीजिए। दूसरा कोई क्या ले रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप फिट बैठते हैं तो आप ये लीजिए। बाजी सर और कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: नहीं बस इतना ही। आज के एपिसोड में हम लोग यहीं पे रुकते हैं
0: जी।
1: फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।
0: थैंक यू वेरी मच अभय चौहान की तरफ से।
1: थैंक यू
0: Yeah, thank you very much.
1: Thank you.

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आपली मानस।
1: कृषि संदेश।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हम किसी दलदल में फंस जाते हैं तो हम जितना बाहर निकलने के लिए पैर मारते हैं उतना ही और गहराई में धंसते चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन असल में हम अपनी ही बर्बादी के करीब जा रहे होते हैं। यह संसार भी एक ऐसा ही चक्रव्यूह है, दलदल है, जहां हम अपनी जिम्मेदारियों और पारिवारिक मोह के नाम पर एक ऐसा जाल बुन लेते हैं कि अंत में उसी जाल में हमारा दम घुट जाता है। हम जिंदगी भर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धंधा, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय करते करते अपनी पूरी चेतना को इसी दायरे में कैद कर लेते हैं। हम एक ऐसी सेना खड़ी कर लेते हैं जिसके सेनापति तो हम होते हैं लेकिन गुलाम भी हम ही बन जाते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी मोह की बीड़ियों से जगाने आए हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का अद्भुत दार्शनिक सूत्र। राम नाम जाप्या नहीं पाल्यो कटक कुटुंब, धंधा ही में मरी गया बहारी हुई न बम्ब। राम नाम जाप्या नहीं

हो बाहर हुई ना बम्ब। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, राम नाम जाप्या नहीं, तुमने जीवन के इस महान सफर में उस राम नाम को, उस परम सत्ता को कभी समय नहीं दिया। तुमने कभी अपने भीतर मुड़कर उस शाश्वत सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो फिर तुमने पूरी जिंदगी क्या किया। कबीर कहते हैं, पाल्यो कटक कुटुंब, तुमने कटक यानी एक बड़ी सेना की तरह फैले हुए अपने इस कुटुंब को, इस परिवार को और इसके ताम झाम को पालने में ही अपनी पूरी उम्र और ऊर्जा खर्च कर दी। अगली पंक्ति में कबीर इस जीवन शैली का अंत बताते हैं, धंधा ही में मरी गया, सुबह से शाम तक किसी इसी भागदौड़, इसी व्यापार और दुनियादारी के धंधों में उलझे उलझे एक दिन मौत आ गई और तुम इसी जाल में दम तोड़ गए। और दुख की बात क्या हुई, बाहर हुई ना बम्ब। बम्ब का अर्थ यहाँ ध्वनि या सत्य की घोषणा से है। कबीर कहते हैं कि तुम्हारे भीतर छिपा जो परमात्मा था, जो दिव्य चेतना थी, उसकी आवाज़ कभी बाहर ही नहीं आई, वह शंखनाद कभी गूंज ही नहीं सका जिसके लिए तुमने यह इंसानी जीवन मिला था। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र से समझें तो यह दोहा हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को एक गहरा विश्लेषण करता है। कबीर यहाँ परिवार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उस मूर्छित आसक्ति पर चोट कर रहे हैं जो मनुष्य को उसकी आत्मा से दूर कर देती हैं। मनुष्य अपने परिवार और धन को ही अपना अंतिम सत्य मान बैठता है। वह भूल जाता है कि यह सब संसार रंगमंच के केवल अस्थाई पात्र हैं। जब चेतना केवल भौतिक संग्रह और रिश्तों के मोह में ही सिमटकर दम तोड़ देती हैं, तो आत्मा वह दिव्य प्रकटीकरण रुक जाता है। रिपीट, जब चेतना केवल भौतिक संग्रह और रिश्तों के मोह में ही सिमटकर दम तोड़ देती हैं, तो आत्मा का वह दिव्य प्रकटीकरण रुक जाता है, जिसे कबीर बम्ब कह रहे हैं। यह एक ऐसा जीवन है जो आया तो सम्राट की तरह था, पर विदा एक कैदी की तरह हुआ। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा इसे धंधे और कुटुंब के जाल को होशपूर्वक देखिए। अपने परिवार की देखभाल करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत सुंदर बात है, लेकिन क्या आप इसके चक्रव्यूह में इतने खो गए हैं कि आप खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता? आपके भीतर का वह चैतन्य, आपके भीतर का वह चैतन्य मौन इस दुनिया के शोर में कहीं दब गया है। आज कोशिश कीजिए उस बम्ब को, उस भीतरी परमात्मा की आवाज़ को बाहर आने देने की। संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने भीतर घुसने मत दीजिए। रोज़ थोड़ा समय निकालकर उस राम नाम से जुड़िए, ताकि जब इस जीवन का अंत आए तो आप यह न कहें कि आप सिर्फ धंधे में ही मर गए। अपनी आत्मा को आज़ाद कीजिए और उस परम ध्वनि को गूंजने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

0: केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: श्रोताओ नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM आरजे शुभांकी के साथ। आज के स्वामिनी इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मिलने वाले एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सॉफ्ट स्किल, वर्क प्लेस इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट में जैसे महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं और एक प्रेरणादायी कॉरपोरेट ट्रेनर भी वो है और लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट भी है। इनका नाम है अंजलि जी बियानी। मैम आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: थैंक यू
1: मैम। सबसे पहले अपने बारे में, अब तक के 12 वर्षों के इस खूबसूरत सफर के बारे में हमें, हमारे श्रोताओं को आप जरा बताइए प्लीज।
2: सो मैंने बहुत अर्ली एज में काम करना शुरू कर दिया था। मैं 17 साल की थी जब मैंने मेरा पहला जॉब स्टार्ट किया। तो 12th का रिजल्ट आया और उसके जस्ट बाद मैंने काम करना शुरू किया। मैं बेसिकली पूरी मेरी शिक्षा और उसके अलावा मेरी पूरा बर्थ, जन्म जहाँ से हुआ है वो इंदौर जगह है।
1: अच्छा।
2: इंदौर पिछले 10 सालों में काफी फेमस भी हो गया है, अब तो सभी जानते हैं। तो मैं वहीं से हूँ और पिछले 10 सालों से जलगांव में हूँ। और एक कलेक्टिव जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो पूरे 12 सालों का है। इन 12 सालों में पहले के 6 साल मैंने इंदौर में काम किया। वहां पे मेरा पहला जॉब रहा न्यूज एंकर और वॉइस ओवर का, जहाँ मैंने दैनिक भास्कर इंदौर से काम करना शुरू किया। वहां पे उस टाइम केबल नेटवर्क चला करते थे, अब तो हम लोग सब सेटअप बॉक्स पे हैं। तो 2009 से इस सफर की शुरुआत हुई और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। मैं जब 12th में थी, मेरा बैकग्राउंड तो साइंस का था, पीसीएम था मेरा, बट धीरे धीरे मुझे क्रिएटिविटी पसंद आने लगी। तैयारी मैं AIEEE की कर रही थी उस टाइम, इंजीनियरिंग के लिए IIT AIEEE चलता था, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। बट समहाउ मेरा पूरा इंटरेस्ट इस तरफ इंक्लाइन हो गया और लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। मैंने वहाँ दैनिक भास्कर में एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता था, तो मैंने समर हॉलीडेज में 12th के बाद ऐसे ही कर लिया और उसके बाद फिर वहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद मेरा फर्स्ट जॉब लगा। तो 2009 में मैंने फिर वहाँ से शुरुआत की। मैंने मेरा पूरा कॉलेज एजुकेशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, फिर MA इन फिलोसफी और उसी के साथ साथ मैंने ये पार्ट टाइम जॉब किया। तो मैं न्यूज़ और वॉइस ओवर से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एक्सपीरियंस लेती रही मैं। मुझे बहुत पसंद था काम करते रहना और एक समय था जब मैंने सोचा था ठीक है अब जॉब भी लग गई है तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई कौन करेगा। तो आई जस्ट लॉस्ट द होप कि ठीक है ग्रेजुएशन कर लिया, जॉब लग चुकी है, नो नीड टू गो। क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ से बस एक अब इसको मैं उनकी मेरी प्रति इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि दे वॉन्ट मी टू बी सेफ, वो चाहते थे मैं सेफ रहूँ या जो भी है। और जिस तरह से उस टाइम कुछ माहौल ऐसे चल रहे थे और इसके लिए अगर आगे करियर बनाना है तो मुझे दिल्ली या इस तरह के शहरों में जाना पड़ता। तो मुझे अलाउ नहीं किया क्योंकि बिजनेस फैमिली थी और मारवाड़ी बैकग्राउंड था, तो मुझे अलाउ नहीं किया गया कि आप जाइए। अपॉर्चुनिटीज थी, मौके थे, बट किस्मत और डेस्टिनी उससे बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया और बेस्ट जगहों पर काम किया, मुझे इस चीज़ की खुशी है। और उसके बाद फिर मैंने MA फिलोसफी किया, फिर धीरे धीरे पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। तो 2016 में मैं जलगांव आ गई, मेरी यहाँ पर शादी हो गई प्रतीक जी बियानी से। और लकी की बात यह रही कि यहाँ पर फैमिली जो इन लॉज थे उनको ये शौक था कि अगर आप पढ़ रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इस चीज के लिए हमेशा इनकरेज किया,
1: काफी सपोर्टिव रहे।
2: यस तो मैं इस चीज के लिए उनको थैंक यू बोल सकती हूँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के दादाजी, मेरे दादा ससुर, वो हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ती रहूं और कुछ करती रहूं। तो लास्ट ईयर ही पास्ड, 95 ईयर्स के थे एंड वेरी हेल्दी, वेरी एक्टिव मैन। और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, वो जब भी बोलते थे बोले अगर तेरा आगे मन है तो PhD जरूर कर लेना। तो इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लक्ष्मी नारायण जी बियानी थे वो, और उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है कि उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि पोता बहू है, मारवाड़ी फैमिली है। उनको लगता था अगर तुम्हें कला है, तुम्हें सीखने का हुनर है और तुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है अंजलि, तो मैं सबको नहीं बोलता हूँ बट तू कर लेना अगर तेरी इच्छा हो तो
1: इसके लिए
2: यस। बट फिर वो उस दरमियान शादी के बाद मैंने 2 साल परिवार को समझा और फिर 2019 से मैंने फिर से मेरी वापस शुरुआत की, क्योंकि मैं इंदौर और मध्य प्रदेश से थी, तो महाराष्ट्र में आने के बाद एक जलगांव में एक सबसे बड़ा इशू रहा कि मुझे मराठी उतनी फ्लुएंट नहीं आती थी. अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट शुरू से रेडियो, टीवी और इस साइड ही था. आज भी देखिए सम हाउ मैं वापस से रेडियो पे हूँ. तो दिस इज डेस्टिनी, आपको जो पसंद होता है आप कहीं ना कहीं से मौका ढूंढ ही लेते हैं.
1: सही सही बात है.
2: तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्टूडियो देखती हूँ, ये माइक देखती हूँ, मुझे कुछ बहुत अच्छी फील होता है. यस, 2019 में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला IMR कॉलेज जलगांव में, और वहां मैंने लेक्चरशिप की शुरुआत की. मैं कम्युनिकेशन स्किल पे बच्चों के लेक्चर्स लेने लगी. बीबीए बीसीए के बच्चों को एक सब्जेक्ट होता है उनके सिलेबस में, सॉफ्ट स्किल और बिजनेस कम्युनिकेशन. मैंने उसके लेक्चर्स लेना शुरू किए और उसके बाद फिर मैंने वर्क करना थोड़ा चालू किया. बच्ची छोटी थी मेरी, तो मैं सिर्फ पार्ट टाइम बेसिस पे या लेक्चररशिप आर्ली बेसिस पे काम करना शुरू किया, पर मुझे फिर से मजा आने लगा. और वो कहते हैं ना कि एक बार आपको काम की लत पड़ जाती है तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको अच्छा लगता है.
1: अच्छा लगता है.
2: और मुझे परिवार वालों को सबको बहुत अच्छा लगने लगा. उसके बाद मैंने रायसुनी कॉलेज में भी 1.5 साल काम किया. हाँ, रायसुनी कॉलेज में भी मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स लिए. इवेंट और उनका सोशल मीडिया पेज देखा करती थी मैं. तो मैं लकी रही इस मामले में कि यहाँ के बेस्ट जो भी इंस्टीट्यूट थे मैंने उनके साथ काम किया, और अभी भी किसी ना किसी प्रकार से जुड़ी हुई हूँ. उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, कोविड हैपेंड और सारी चीजें हुई. उसके बाद बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरी डॉटर को ज्यादा थोड़ा अटेंशन की और टाइम की जरूरत है, तो मैंने उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है टैंटलम अकेडमी, तो वो सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, उनके साथ एज अ फैसिलिटेटर काम करना शुरू किया. क्योंकि काम रिमोट था तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया फैमिली और बच्ची को मैनेज करना. और क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूं तो मैंने हमेशा ये सीखा और मेरा वो नेचर रहा कि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट. तो काम तो अपनी जगह है, बट क्योंकि हमने हमारी मर्जी से एक फैमिली बनाई है और उस फैमिली में हम रहते हैं, तो उस बैलेंस को अगर हम लेकर चल सके किसी ना किसी तरीके से, तो मैं इसीलिए अभी इस तरह से एसोसिएटेड हूँ उस कंपनी के साथ. फिलहाल मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रही हूँ, और वापस से क्योंकि अब डॉटर थोड़ी बड़ी हो गई और इंडिपेंडेंट हो रही है, तो मैं फिर से अपनी हॉबीज और उनकी तरफ इंक्लाइन हो रही हूँ. तो ये जर्नी रही.
1: शुभकामनाएं आपके जो आपकी जर्नी है उसके लिए. तो मैम, आप मुझे बताइए कि आजकल सॉफ्ट स्किल को बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है सभी को, कि इतना महत्व कैसे और क्यों है ऐसे लगता है आपको?
2: सो बेसिकली अगर मैं मेरी खुद की अगर बात करती हूँ, एक जर्नी में जब आप चीजें सीखते सीखते आते हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस लेते हुए आते हैं, तो आप भी काम कर रही हैं, बट आपको पता है कि इट्स नॉट दैट इजी. आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की टेक्निकल स्किल्स तो आपको कोई सिखा सकता है, क्योंकि मैथ्स है, आपको कोई फॉर्मूला दे देता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको एक फॉर्मूला दे दिया है,
1: मिलने के बाद हम सॉल्व कर सकते
2: हैं. सॉफ्ट स्किल इज समथिंग जो आपको लाइफ में धीरे धीरे काम करने से और प्रैक्टिस से ही आएगी,
1: तभी गेन कर सकते.
2: इसको आप रट नहीं सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. और सॉफ्ट स्किल आपको आगे बढ़ने में मदद करती है. आपको जो हार्ड स्किल्स हैं वो कोई चीज को पाने में जरूर मदद कर सकती है, बट अगर सॉफ्ट स्किल है तो आप उस चीज को आगे तक लेकर जा सकते हैं. तो आप अपनी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में अगर बैलेंस बिठा लें और अगर ये बेसिक चीज हम सीख लें, और सॉफ्ट स्किल एक अम्ब्रेला टर्म है, सॉफ्ट स्किल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, कम्युनिकेशन आता है, बॉडी लैंग्वेज आती है, आपके पोस्चर्स आते हैं, जेस्चर्स आते हैं, देयर आर सो मेनी. तो इस अम्ब्रेला टर्म को अगर मैं लेके चलूं, उसमें से कुछ बेसिक लाइफ स्किल भी हमने अगर सीख ली तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है जिस भी पाथ पे हम चल रहे हैं, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तो हम उस फील्ड में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं. हमारे लिए चीजें इजी हो जाती हैं.
1: अंजलि मैम, मुझे ये पूछना है आपको कि कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं उनका बैलेंस कैसे रखना है, मतलब अपने लाइफ में?
2: टेक्निकल स्किल इज सिंपल, आपको कोई सिखा देता है. आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर चलाना सीखना है, आपको बता दिया ऑन ऑफ ऐसे होता है, और ये कीबोर्ड में है, आप जो इसमें प्रेस करेंगे वो सामने दिखेगा, एंड सो ऑन. आपको इस तरह से कंप्यूटर की स्किल सिखा दी जाती है. नाउ अगर फॉर एग्जांपल आपको ये है कि अगर लाइट चली गई तो उस कंप्यूटर को कैसे रन करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है और उस मशीन को कैसे यूज करना है. अगर वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है तो उसको कैसे यूज करना है. और यही है सॉफ्ट स्किल कि अगर वर्क प्लेस में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम

0: उनके ओहदे के अकॉर्डिंग उनके साथ डील करना जो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम करे और पर्सनली भी हम उनसे सीख पाए, तो इसी को सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। तो ये बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: आजकल की युवा पीढ़ी को देख के अगर चलते हैं हम, तो उनके पास नॉलेज है, सब कुछ है, उनको नॉलेज मिल भी रहा है काफी सारा, बट ये बात होती है कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम की कमी रहती है, तो वो उस चीज को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए युवाओं ने?
0: तो पहले हम इस बात पे आते हैं कि कॉन्फिडेंस कम ही क्यों हो रहा है या सेल्फ एस्टीम में लो क्यों
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो क्योंकि कोविड जब हुआ, ये वही जनरेशन है जो कोविड में घर के अंदर थी, जिन्होंने या तो अपना ग्रेजुएशन या 11th 12th बोल लो ये, या फिर उनके करियर की शुरुआत कोविड में हुई है, तो उन्हें एक्सपोजर जो रहा वो सिर्फ स्क्रीन जितना रहा। बट क्योंकि अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, हम वापस वर्क प्लेसेस पे आ गए हैं और हार्डली अगर कोई हमको वर्क फ्रॉम होम ऑफर भी कर रहा है तो देर इज अ हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस तरह के कॉन्सेप्ट में काम करें। तो वो कोविड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तो जिसको हम अगर एक हम बहुत एक कॉमन वर्ड बोलते हैं कि जेन जी, तो जो जेन जी आई वो इस तरह से बाहर उनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ ही नहीं। उन्होंने, क्योंकि हम बोलते हैं इंसान एक सोशल एनिमल है, बट वो सोशल एनिमल बनने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा सेल्फ स्टीम रूल, क्योंकि उन्होंने उतना एक्सपोजर देखा ही नहीं। नाउ थैंक्स टू एआई एंड एवरीथिंग हमारे हाथों में सारी चीजें आ जाती हैं, तो बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ के ऐसे काम हो गए हैं अब ऐसे जो हमें लोगों से इंटरेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सब्जी चाहिए, घर आ जाएगा, जलगांव में अब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो एवरीथिंग इज कमिंग टू योर डोरस्टेप। मैं आज यहाँ आई, मुझे एक प्रिंट आउट चाहिए था, तो इट हैज बिकम सो इजी, तो मैंने वो फटाफट बुलवा लिया क्योंकि फॉर सम हाउ मैं नहीं अरेंज कर पा रही थी, तो इट इज जस्ट अ मिनट अवे फ्रॉम योर होम। अब जब ये सब चीजें होती हैं तो ये कॉन्फिडेंस हमारा ऑलरेडी कम हो चुका है, हम इंटरेक्शन कर ही नहीं रहे हैं, अब उसको बढ़ाएं कैसे? तो उसका सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका है, परिवार में जितने भी लोग हैं, 1, 2, 3, 4 थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करके हम उनसे बातचीत करें। पहले के वक्त में हम जब मील्स लिया करते थे, हमारा लंच डिनर लेते थे, तो हम साथ में बैठते थे,
1: सब शेयरिंग होता,
0: दिन भर की बात होती थी, इनफैक्ट हमें पता होता था कि घर का कोई बड़ा है, दादाजी हैं या पापा जी हैं, वो कोई भी हमें डांटने वाले हैं तो भी हमको बैठना तो उसी जगह है, हमारे पास कोई ऑप्शन
1: नहीं था,
0: सो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। तो हमें हमारी दिनचर्या बात होती थी, हम बताते थे, लैंग्वेज इम्प्रूव होती थी और इसी तरह हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। तो ये सबसे बेसिक तरीका है कि आप इंटरेक्ट करना शुरू करें, स्क्रीन के पीछे नहीं, बिल्कुल स्क्रीन हटा के सामने आमने सामने होकर करें, लोगों से मिलें, बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश एयर लें, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, तो वो सारी चीज़ें अगर रहती हैं तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगता है और फिर हमें उसके रिजल्ट मिलने चालू होते
1: हैं। बराबर
0: है। और सिंपल है, जब हमें रिजल्ट दिखते हैं तो हम उसे और इम्प्रूव करते हैं, तो सोशली जितना एक्टिव हो सके, एटलीस्ट हम घर से तो शुरुआत कर ही सकते हैं
1: या फ्रेंड्स रिलेटिव्स,
0: हम वहां से शुरुआत कर
1: सकते हैं
0: जी।
1: अभी अंजलि जी, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
0: ये ना बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैंने ऐसे समझा है कि एक जिस कम्युनिटी में या जिस सेटअप में हम रहते हैं उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि अब हम लोग शादियां, मतलब लड़कियां स्पेशली शादी डिले क्यों करती हैं। रीजन ये रहा कि जो टाइम हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ का था वही टाइम हमारे परिवार को बनाने का है, वही टाइम हमारी फैमिली बढ़ाने का है, और इस कारण क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें वैसे बड़ा किया गया है और हमारी सोच रहती है कि नहीं, हमारा पूरा फोकस पहले
1: फैमिली
0: और मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये सब रहे, सारी चीजें हम उसमें जोड़ लेते हैं,
1: मल्टीटास्किंग वुमेन के लिए रहता है।
0: बट आई विल से कि ये पुराना कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सही भी था, अगर मैं डॉक्टर के नजरिए से देखूं, लॉजिकली देखूं, वो उम्र सही होती
1: सही,
0: है
1: सही।
0: सब चीजें होती हैं, बट मैं फिर भी ये बोलूंगी आज की सुविधाओं का फायदा लें, आप सब चीजें टाइम पे कर सकती हैं, जो पुराने कॉन्सेप्ट है उसके साथ बैलेंस बना के चल सकती है, बट जितनी सुविधाएं उसका फायदा लें, क्यों अगर आपको पार्ट टाइम कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो पार्ट टाइम करें, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो इंटरेस्ट या हॉबीज है उनको ना छोड़ें, उसे डेवलप करें, क्योंकि कभी ना कभी, ये मेरा मानना है और शायद मैंने इसीलिए वापस काम शुरू किया क्योंकि 2016 के बाद मैंने 2-2.5 साल का गैप लिया और मैंने नहीं सोचा था कि मैं आगे काम करूंगी, मैंने सोचा था मैं परिवार

0: पालूंगी, मैंने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया है 6 साल, तो ठीक है, अब मेरा ऐसा नेसेसरी नहीं था बिजनेस में, इफ दे रिक्वायर मी मैं जाऊंगी ज्वाइन कर लूंगी. बट लेटर मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि आपकी एक अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है, और एक बार अगर आप काम कर चुके हैं तो ये एक नशा है, और वो नशा अच्छा है, क्योंकि जब आप खुद उस जोन में आते हैं कि ये मेरी पहचान है, ये मेरा वजूद है, तो आपको खुद बहुत कॉन्फिडेंस
1: आता है. बूस्ट होता है.
0: यस, तो आज की सुविधाओं का लाभ लें, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है या जो भी आप कर सकती अपनी कैपेसिटी के अंदर, अगर आपको लिखने का शौक है तो 1 घंटा दीजिए ना, लिखिए. आपको एक्सरसाइज का शौक है, आप 1 घंटा दीजिए, आधी घंटा दीजिए, पर वो करिए. एटलीस्ट जब बच्चे आपके बिजी हो जाएंगे, जब फैमिली वाले सब बिजी हो जाएंगे, तो आप वो चीज अपने इंटरेस्ट या हॉबी को शायद प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाए.
1: Exactly.
0: या फिर अपने आप को खुशी तो दे पाएंगे.
1: जी, बहुत ही बढ़िया. अभी फाइनली एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड में लेना चाहूंगी आपके साथ. एक शब्द में खुद को परिभाषित आप कैसे करेंगे?
0: सेंसिबल.
1: वाओ. आपकी सबसे बड़ी ताकत?
0: आई एम अ गुड लिसनर.
1: एक ऐसी किताब जिसने सबसे अधिक आपको प्रभावित किया?
0: लीन इन.
1: वाओ. पसंदीदा मोटिवेशनल कोट या फिर कोई आइडॉल?
0: मुझे कोट तो नहीं बोल सकती, बट मुझे हमेशा एक चीज जो लगती है जो मैं चाहती हूँ मैं वैसी बनूं और वैसी रहूं, उसको मैं बोल सकती हूँ कि आई वांट टू बी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ऑलवेज.
1: वाओ. एंड यू आर.
0: थैंक यू.
1: ऑनलाइन लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग?
0: डेफिनेटली ऑफलाइन लर्निंग.
1: लीडरशिप का एक बेस्ट क्वालिटी क्या कह सकते हैं?
0: लीडरशिप करने के लिए यू हैव टू हैव एम्पैथी.
1: और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप अगर मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं होती तो और किस क्षेत्र में होती, आपको कैसा लगता है?
0: डेफिनेटली या तो मैं न्यूज एंकर होती या आरजे होती.
1: तो वाकई आज की इस प्रेरणादायी बातचीत से ये समझ में अक्सर मिला कि सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं को लगातार बेहतर बनाते रहना है. आपकी बातें निश्चित रूप में हमारे लिए प्रेरणादायी है. अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और हमारे साथ बातचीत की.
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम बाद ये माहौल मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM.

0: नमस्ते दोस्तों, मैं राजन बाजी और मेरे साथ है अभय सर, द MBA डिफरेंशिएटर प्रोग्राम, है ना। आज हम लोग फिर से आपके सामने हाजिर हुए।
1: नमस्कार दोस्तों, नमस्कार
0: अभय सर जी। आज हम कौन से विषय पे चर्चा करेंगे?
1: अभी जैसे तीन हमने स्पेशलाइजेशन की पिछले एपिसोड्स में बात की है, तो करंटली आज हम IT का जो स्पेशलाइजेशन है MBA इन IT, तो उस पे हम चर्चा कर लेते हैं।
0: राइट जी, तो चालू करें सर?
1: जी बिल्कुल
0: ओके। जैसे हमने ना डिस्कशन का फॉर्मेट डिसाइड किया है, हम लोग एजुकेशन, ये पर्सनालिटी, पर्सनल इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर ये MBA IT ये फील्ड जो है, MBA IT जो है,
1: हाँ,
0: इसको इवेल्युएट करेंगे।
1: राइट।
0: तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एजुकेशन। ये कौन से कैंडिडेट्स के लिए, कौन से ना स्टूडेंट्स के लिए MBA IT करना ज्यादा यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा?
1: राइट।
0: तो एजुकेशन जो है, जिनका टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे इंजीनियरिंग जिसने किया है BE या फिर BCA या फिर BTech, उनके लिए MBA IT काफी हद तक हेल्पफुल हो सकता है।
1: जी।
0: और जैसे हर बार हम लोग बोलते हैं कि ये प्रेफरेबली उनका एजुकेशन टेक्निकल रहा तो, अदरवाइज जिसका इंटरेस्ट है, जैसे कॉमर्स वाले है या फिर दे कैन ऑल्सो गो फॉर MBA IT
1: जी,
0: जिनका ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या फिर IT सर्विसेज में जो है, दे कैन गो फॉर MBA IT।
1: राइट।
0: जिनका टेक्निकल एजुकेशन है, प्रेफरेबली उन्होंने ये करना, उनके लिए काफी हेल्पफुल, काफी सपोर्टिव रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें एक चीज और मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक पुणे का बहुत फेमस कॉलेज है, मैं वहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन IT का स्पेशलाइजेशन एक्सक्लूसिवली है, यानी टेलीकॉम का स्पेशलाइजेशन IT वाला है। और कई स्टूडेंट्स उसमें ऐसे हैं कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं पर वो IT का स्पेशलाइजेशन ले लिया। अब उसका नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जैसे ही एक सेमेस्टर खत्म हुआ तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करना, बहुत बहुत टफ हो रहा है उनको।
0: करेक्ट।
1: तो जो आपने एजुकेशन की जो पॉइंट बताई, एब्सोल्युटली वैलिड है। आपका टेक्निकल ग्रेजुएशन होगा तो ही आप इस फील्ड को आप सेलेक्ट कीजिए।
0: करेक्ट। बैकग्राउंड बनता है, बेस बनता है।
1: जी बेस बनता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज एक और है पॉइंट, बाजी सर आप मेरे साथ भी सहमत होंगे। जैसे IT ले लिए तो काफी लोग कहते हैं कि भाई हमने BE कर लिया, BCS कर लिया, अब MBA IT करने की क्या जरूरत है? तो इसमें मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा कि क्यों जरूरत क्यों है ये MBA IT।
0: सर देखिए, जब आपके पास टेक्निकल डिग्री होती है,
1: हाँ,
0: है ना, तो आपको टेक्निकलिटीज में यू आर द एक्सपर्ट इन टू द टेक्निकलिटीज।
1: राइट।
0: लेकिन इसके अलावा भी इफ यू लुक एट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग रोल प्रोफाइल आप देखते हैं, तो टेक्नो कमर्शियल जो मैनेजर्स होते हैं उनको नॉलेज दोनों होना चाहिए।
1: जी।
0: टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, मैनेजमेंट नॉलेज भी होना चाहिए और कमर्शियल नॉलेज भी होना चाहिए।
1: ट्रू।
0: सो इफ यू वांट टू ग्रो,
1: बराबर,
0: और आप जैसे इंजीनियर बोल के ज्वाइन होंगे कहीं पे या IT स्पेशलिस्ट बोल के ज्वाइन होंगे, तो लाइफ लाइन यू कैन नॉट वर्क ऑन द सेम प्रोफाइल। आपको ग्रो भी तो होना है।
1: एब्सोल्युटली राइट।
0: आपको ग्रो होना है तो यू नीड टू हैव अपग्रेडेड स्किल।
1: जी।
0: और ये दिस इज द MBA IT इज अपग्रेडेड स्किल, तो उसके लिए MBA IT करना डेफिनेट यूजफुल रहता है।
1: राइट। तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं बाजी सर। एजुकेशन पे तो बात कर ली हमने, अभी नेक्स्ट आते हैं पर्सनालिटी। अब हर स्पेशलाइजेशन लेने के लिए खरे की कोई एक पर्सनालिटी होना भी जरूरी है।
0: करेक्ट।
1: जिसे कॉर्पोरेट जार्गन कहें या जनरल जार्गन, मैनेजमेंट जार्गन भी कहें, जो मिसफिट जिसे कहते हैं।
0: राइट।
1: तो देखने वाली बात यह होती है कि उसमें कहीं मिसफिट तो नहीं हो रहा है, कोई पर्सनालिटी जॉब प्रोफाइल मिसफिट तो नहीं हो रहा है। तो हम IT स्पेशलाइजेशन के लिए पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अब नॉर्मली जो IT वाला जो होता है बंदा या बंदी जो भी होती है काम करता है, तो 8 घंटा कम से कम कंप्यूटर से पे ही बैठा रहेगा।
0: ट्रू।
1: राइट। और इधर उधर ह्यूमन इंटरेक्शन इतना नहीं होता है।
0: right.
1: तो एक बाय डिफॉल्ट जो होती है टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी अगर थोड़ी सी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है तो अच्छा है इस प्रोफाइल के लिए। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। इंटिटिव होना चाहिए। इंटिटिव मतलब ये है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 2 × 2 = 4 होता है, तो 4 − 1 अगर हो गया तो 3 होगा।
0: right.
1: तो उसका मतलब इंटिटिव, यू कैन सी इन फ्यूचर, थोड़ा बहुत आप फ्यूचर आप देख सकते हैं।
0: right.
1: और तीसरी बात ये हो गई कि एक जनरल है, एक थिंकिंग मैन चाहिए, थिंकिंग पर्सन चाहिए, यानी राधर जो थोड़ा भी सोचते रहता है कि थिंक, लॉजिक, ब्रेनी काइंड ऑफ ए थिंग। और तीसरा हो कि जजिंग करना, जिसे लॉजिकल भी हम कह सकते हैं, एक थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। तो अगर ये सब जो क्वालिटी आपकी पर्सनालिटी में अगर है तो आप इस IT फील्ड के लिए आप फिट बैठते हैं। क्योंकि मेरा एक सिंपल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। एक कैंडिडेट से मैं बहुत पहले मिला था, तो उसने BE किया था और फिर उसके बाद MBA भी करके आया, पर उसका लॉजिक टेक्निकल जो थिंकिंग था उसका बहुत ही कम था और वो फिट ही नहीं बैठ रहा था रोल में। तो एंड ऑफ द डे फिर ऐसा होना पड़ा क्योंकि उसको उस रोल से हटा के फिर किसी नॉन आईटी फील्ड में डालना पड़ा और उसको काफी सारा उसको फ्रस्ट्रेशन आ गया और उसने छोड़ दिया और रिजाइन करके चला गया। आपका क्या थॉट है?
0: करेक्ट है सर, करेक्ट है। ये काफी होता है आज की डेट में
1: जी।
0: तो इसीलिए हम लोग हर एपिसोड में भी बोलते हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड यूर सेल्फ फर्स्ट।
1: यस,
0: कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है।
1: राइट राइट।
0: और आज की डेट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है टू अंडरस्टैंड यूर सेल्फ।
1: राइट।
0: जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स है आज की डेट में जो आपका टेस्ट लेके आपको बताते हैं कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी लाइक, पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है।
1: राइट राइट।
0: वो सारे बता सकते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से यू शुड टेक द डिसीजन।
1: यस यस।
0: ये इसके लिए जरूरी है क्योंकि इफ यू चूज द फील्ड विच इज सुटेबल फॉर योर पर्सनैलिटी,
1: यस,
0: तो यू विल ग्रो फास्ट एंड यू विल सेव टाइम।
1: राइट राइट।
0: जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें उसके कुछ महीने कुछ साल तो बर्बाद हो ही गए क्योंकि एक दो साल के बाद ही अंडरस्टैंड मेरे लिए ये सुटेबल
1: नहीं करता। एब्सोल्युटली।
0: इट मींस ट्रायल एंड एरर में उसका टाइम वेस्ट हो गया।
1: यस यस। तो जो दोस्त हमको सुन रहे हैं, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ बाजी सर अभी, कि फर्ज करो अगर ये पर्सनैलिटी आपकी फिट नहीं होती है तो कैंडिडेट सोचेगा भाई मैंने करना क्या है अब, है ना, मैंने तो मेरा स्पेशलाइजेशन सब कुछ है ना, उसमें एक और ऑप्शन बचता है। जैसे काफी सारी इंजीनियरिंग कंपनीज है या आईटी कंपनीज भी होती है तो उसमें प्रोफाइल अलग भी होता है कि आप सेल्स का प्रोफाइल भी आप ले सकते हो, उसमें मार्केटिंग का प्रोफाइल भी आप ले सकते हो। ये सारा स्पेशलाइजेशन लेने के बाद भी अगर आपका पर्सनैलिटी सूट नहीं हो रहा है तो बाजी सर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट
0: पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा बात करते हैं। अभी इसमें कैसा है सर कि पर्सनल इंटरेस्ट है ना, बहुत सारे कैंडिडेट जैसे जिनको चाहिए होता है कि दे वांट टू वर्क इन अ वेरी कूल प्लेस, दे वांट टू वर्क ऑन डेस्कटॉप ओनली, दे डोंट वांट टू गो आउट।
1: राइट।
0: तो ऐसे लोगों के लिए आईटी फील्ड बहुत बढ़िया है,
1: बेस्ट है,
0: है ना, जिनको कुछ दिमाग का काम चाहिए उनको, जो पर्सनैलिटी या फिर आपका स्किल वाला जॉब रहता है ना, जैसे रिलेशनशिप डेवलपमेंट, इसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, दे वांट समथिंग ब्रेनी वर्क,
1: ब्रेनी वर्क,
0: उनके लिए ये बहुत सुटेबल है।
1: जी जी। तो पर्सनल इंटरेस्ट इसी यानी मोटा मोटी जो मैं समझ रहा हूँ कि आप कह सकते हैं जिनको भाई ऐसे फिजिकल एक्सर्शन वाला ऐसा कोई जॉब का अगर इंटरेस्ट नहीं है और केवल जैसे आपने कहा कि केवल ब्रेन का ही इस्तेमाल होना चाहिए, वैसा वाला अगर आपको इंटरेस्ट है तो दिस इज द राइट फील्ड।
0: करेक्ट।
1: एब्सोल्युटली राइट फील्ड।
0: जी। और फिर ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो सोचते हैं कि मेरा लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा है, है ना, जिनका लॉजिकल उनको ये कॉन्फिडेंस है और उनको पता है, तो उनके लिए भी ये फील्ड बहुत अच्छा है।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
0: देन जिनको है ना टेक्निकल सिस्टम्स डेवलपमेंट वगैरह इसमें इंटरेस्ट है उनके लिए भी ये फील्ड बहुत अच्छा है, है ना,
1: यानी कुछ नया खोज रहे हैं, कुछ नया करना है, इसमें से क्या और कर सकते हैं, डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, तो दिस इज द राइट फील्ड। पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपका है तो दिस इज द एब्सोल्यूट।
0: क्रिएटिव साइड में जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है
1: जी जी,
0: उनके लिए बहुत बढ़िया फील्ड है।
1: जी जी जी सर। तो भाजी सर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तीन चीज को हमने अभी टच किया, एजुकेशन, पर्सनैलिटी, पर्सनल इंटरेस्ट।
0: करेक्ट।
1: अभी सबसे मुद्दे की बात आ जाती है, अभी मेरा अपॉर्चुनिटीज क्या है,
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज।
1: आईटी अगर अपॉर्चुनिटीज अगर हम आज अगर बात करेंगे तो ऐसी कोई कंपनी नहीं जहां पे आईटी डिपार्टमेंट नहीं है करंट सिनेरियो में।
0: true, true.
1: और एक्सक्लूसिवली आईटी कंपनीज तो भरमार है तो गिनाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: Correct.
1: तो इन जनरिक अगर हम बोलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आर एम्पल, कोई इसमें कोई कमी नहीं। आपकी क्या राय है बाजी?
0: ट्रू सर, ट्रू। और आप जैसे देखते हैं ओवरऑल देखते हैं डेवलपमेंट अपना, है ना, वी आर गोइंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
1: यस यस।
0: और टेक्नोलॉजी अपने डे टू डे लाइफ में है ना काफी इन्वॉल्व हो रही है।
1: जी, जी.
0: है ना, वी आर मिक्सिंग विद दी टेक्नोलॉजी एंड आर डेली रूटीन लाइफ, है ना।
1: यस।
0: आप जैसे देखते हैं कि बैंकिंग आज की डेट में आप मोबाइल बैंकिंग, एवरीबडी इज डूइंग द मोबाइल बैंकिंग, कार्ड ट्रांजेक्शंस, ये सारी चीजें है ना, टेक्नोलॉजी इज नाउ बिकमिंग आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ,
1: लाइफ।
0: तो ये आईटी डेवलपमेंट या फिर आईटी वाले जॉब्स जो है काफी इसकी वजह से है ना डेवलप हो रहे, अपॉर्चुनिटीज काफी बन रही है मार्केट में।
1: जी,
0: ठीक है।
1: तो इसमें मोटा मोटी अगर मैं कहूंगा कि जो सुन रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा गाइडेंस टाइप का, पहला हो गया आपका आईटी इंडस्ट्री हो गया, एनी कंपनी, हजारों कंपनी है अपने देश में और अब्रॉड भी। दूसरा हो जाता है मेन सेक्टर, हो जाता है टेलीकॉम सेक्टर, हो जाता है
0: टेलीकॉम सेक्टर।
1: जी। तीसरा आपका ऑनलाइन मार्केटिंग जो हो जाती है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, ये सब कंपनीज हो गए,
0: ई कॉमर्स कंपनी
1: जिसे कहते हैं। राइट। और बैंकिंग हो गए, प्लस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और यू टॉक अबाउट एनी कंपनी,
0: एनी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड अ
1: आईटी सेटअप, चाहिए ही चाहिए, आज उसके बगैर कुछ होता ही नहीं है।
0: करेक्ट।
1: 10 साल पहले हम अगर बात करते तो हम बोल सकते थे केवल आईटी इंडस्ट्री है और थोड़ा बहुत भाई आपका टेलीकॉम में चलता है, पर आज की सिनेरियो में हर कंपनी हर जगह में आईटी वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
0: राइट राइट
1: जी। तो दोस्तों आज आईटी के एपिसोड में इतना ही हमारे तरफ से। मैं अभय चौहान
0: और मैं राजन बाजी,
1: धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
1: ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू।